साथियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके। बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता। लगा अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामे बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें। कैसे दामाद जी? नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें? नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता है, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, मैया कैसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति।
ना कभी देखे होगो, मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो, बोल मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई, बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो। मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा, बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दो। तू कहेगो मोकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर? तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटेली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा है, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो समान, और मैया भीतर चले। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिन
दिन से मिलने आए हैं, थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मनी मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते। अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, तो आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है? तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करो? बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई है। मैया बोली अब कहा करे? बोले कहा करे का नजर उतारो या की। बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके आ भीतर के। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया

बोले हमारी मैया है ना वो आपको लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे हुए वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ। मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आ एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गए, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी, बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठे हो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको। गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कू बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दे, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है, वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो एक कार्यक्रम हो उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखना,

दा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तोकु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो मैया, तोकु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो मैया, बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए। बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले, 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो। तो बाबा तू ही बता, छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, मोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब, बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वही खड़ी की खड़ी। बाबा बोले, कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूं, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी क्या हालत होगी। बाबा वही बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा, मैया जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती, ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा, और बाबा भोलेनाथ वही ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, 4 स्थान पर 4 रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन प्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्लेस, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है, और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वही ठीक था आश्रम में, ये बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हैं हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहां से विधि सीख कर जाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा. नो, इट इज डेली. बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली. हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुक कर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखे. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. रियली इट्स एन एपिडेमिक. एवरीवन सेज द सेम लाइन. वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास. तभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है. आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते

घटनी हो गई। जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है। पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है। आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी। सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी। एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं। और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा। तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे? चार्ज्ड। इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है। ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है। कहीं होगा तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा। सो इट इज नॉट इजी, ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है। ऐसे नहीं 3 दिन में, 3 दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन 3 डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो। लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको 1 घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड। हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन? इसका क्रिएटर कौन? कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स? आवर सब। जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं? दूसरों पे। हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है। हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे, हम प्यार से बात करें, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत बहुत बहुत गलत करे, हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत बहुत बहुत ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हां जी, नो, खड़े हो जाइए, नो। हां जी हां जी, कोई बात नहीं, दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग, कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो। व्हाई? व्हाई? लेट्स थिंक, व्हाई? Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए, एक बार जो साथ में बैठे, भाई सर।

She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम बैठिए. थैंक यू. दिस इज वन बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट अलाउविंग अस टू बी आर सेल्फ. नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर हियर एंड यू आर हियर. ये उनका बिहेवियर है. हु इज क्रिएटिंग माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts? Me. What did they create? They created their behavior. What did I create? Is my behavior dependent on their behavior? It is dependent on me. All that I have to take care is when they do something which is their way, I have to respond my way. एक इक्वेशन आज से चेंज कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए. लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू. बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल. सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी. तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने. उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं. चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं. ये एक सेम बिहेव करता है. चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं. दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स. स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन My choice. आज एक मुक्ति यहां जो चल रहा है, हमारे words, हमारे behavior, every time से this is my choice, this is my creation. Don't put the finger on people or situations कि परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो. True नहीं है ये बात. They will be their way. I will be my way. फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है. लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है? मैं. गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम. वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम. हम उनके व्यवहार के गुलाम. स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट. लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता. वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती. पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े. प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी. सारा दिन खड़े. इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे. हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है. तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं? नेगेटिव. और ब्लेम किस पर डाल देते हैं? एक टीम में 5 लोग हैं. सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह

उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है, तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। सिमिलरली वो पांच लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया। उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया, ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया। ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन। तो एक इक्वेशन, जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन? हम। जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं। जब हम कहेंगे उनकी वजह से, तो हम किसको चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं? उनको। हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? हम इरिटेट होते हैं किसकी वजह से? कोई काम कर रहा है, हमने उसको काम करने के लिए बोला, वो टाइम थोड़ा धीरे लगा रहा है, ज्यादा टाइम लग गया, वो ठीक से नहीं कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है, इरिटेट कौन हो रहा है? इरिटेट कौन हो रहा है? हम हो रहे। फिर भी उसने ठीक से नहीं किया तो गुस्सा कौन हो रहा है? हम। एंड जब हम ये कर रहे हैं तो एनर्जी किसकी घट रही है? हम। काम हो जाएगा, काम हो गए, आज बहुत काम हो गए, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, बहुत कुछ कमाया, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन जिस तरह कमाया, इरिटेट होके, क्रिटिसाइज करके, मजाक उड़ा के, किसी की निंदा करके जिस तरह कमाया, उसकी वजह से घर में खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई। और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन। तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? किसका ध्यान रखना? काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए? चार्ज्ड। ये ग्लास है, भरा हुआ है। इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है, शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फुल। कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब। देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते। कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी। नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड। भागना था, भागना था, कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में, लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे, नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए। हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो, जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया। हाँ, वर्क यहाँ, दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई। कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी रास्ते जाते हैं, रोज उसी ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लेकिन रोज इरिटेट होते हैं, रोज आसपास के लोगों को कुछ कुछ बोल भी देते हैं बंद गाड़ियों के अंदर। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को तो सुना ही भी नहीं दे रहा हम क्या बोल रहे हैं। एनर्जी किसकी डिप्लीट हो रही है? मेरी। नींबू गिर गया,

राजयोग मेडिटेशन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ. मेडिटेशन मीन्स ध्यान. ध्यान, द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल. ध्यान, अपने मन का ध्यान रखना. आपके आसपास सारे लोग भी अपना नींबू गिरा दे, आपका गिरना नहीं चाहिए. और शाम को जब हम घर आए, बैक टू फैमिली, ये ग्लास कैसा होना चाहिए था? आज दोनों पेरेंट्स घर आ रहे हैं खाली ग्लास के साथ. धन भरपूर, आत्मा रूपी ग्लास खाली, तो बच्चों को क्या देंगे? समान ही दे सकते हैं ना फिर सिर्फ, क्योंकि समान भरपूर, शक्ति खाली, दोनों आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आज स्कूल के बच्चे प्रोजेक्ट में डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं. ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो. Why? Because last few years what we did, we just kept running without taking care. Now what we are going to do, we are still going to run, but with taking care. यहाँ ध्यान रखते हुए भागना है, और फिर वो जो भागना भी होगा ना, उसको enjoy करेंगे. ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है. यहाँ समान मिलता है, यहाँ सुकून मिलता है. शाम को हमें सिर्फ समान कमा के घर नहीं आना है. क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है. बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए. पीपल शुड गो होम हैप्पियर देन वॉट दे केम इन द मॉर्निंग. Then we are sending happy parents home. We are sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे. और उसके अगले दिन वो और happy आएंगे. और day by day हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. आज क्या हो रहा है? Day by day हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए जब हम change होंगे, हमारा घर का वातावरण change होगा, हमारा work culture भी change हो जाएगा. हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा. सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं. एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट. बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया. तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी.

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। शाम का बोला सुबह आ चुका है, यानी कि शो का नाम है फरीदाबाद की गलियों से। और आज क्या है, वीकेंड है ब्रो। और अगर आप लोगों की भी आज छुट्टी है तो ठीक है, छुट्टी वैसे कोई स्पेशल डे है नहीं, बट हो सकता है काफ़ी सारे लोग वीकेंड पे छुट्टी ले लेते हैं, उनके पास छुट्टियां पड़ी होती है, वो सोचते हैं चलो यार छुट्टी को एंजॉय कर लेंगे। और अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो, फरीदाबाद की गलियों से मैं हम लोग फरीदाबाद की सारी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल पहले मैं बात करना चाहूँगा इस प्यारे से मौसम की, जो अब कुछ दिन बाद प्यारा नहीं रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ऐसा कह रहा है कि देखो आज कल परसों और अगले हफ्ते ट्यूसडे या फिर वेंसडे तक आप लोग खुशियां मना लो, क्योंकि उसके बाद गर्मी अच्छे से पड़ने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 से 14 मई के आसपास आप लोगों को गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रचंड वाली गर्मी भी देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें एयर क्वालिटी की, तो ये जो कुछ दिनों में बारिश हुई है ना अभी कुछ दिन पहले से, इसकी वजह से एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधर गई है। और मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों से, क्योंकि मैं देख रहा था लोग आजकल भी इतनी गर्मी में भी लोग पॉलिथीन जला रहे हैं, लोग टायर जलाने डाल देते हैं। आई डोंट नो क्या आता है उन लोगों के दिमाग में, टायर को जला देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर ना स्टील की वायर होती है, उसको निकालने के लिए लोग टायर जला देते हैं। क्यों करना है भाई ये चंदी वाली हरकतें? तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है इन चीजों से। और साथ ही साथ देखो, अब आप लोग बोलोगे कि तू तो खुद एसी में बैठा और ज्ञान दे रहा है, ठीक है ये सब चीजें चलती रहती है, बट हाँ हम लोग जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो करेंगे कंट्रोल। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। वापस आकर बात करते हैं सिरोही झील के बारे में, जिसकी चर्चा आजकल इंटरनेट पर हर जगह है, और साथ ही साथ प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सोशल मीडिया पर फरीदाबाद हर जगह वायरल है। कह रहे हैं दिल्ली के पास में फरीदाबाद में एक हिडन स्पॉट है और उस हिडन स्पॉट को कहते हैं सिरोही झील। और लोग वीडियोस बना रहे थे कि जाओ यहाँ पर, मगर पानी बहुत गहरा है, पानी के अंदर मत जाओ। अब कोई इंसान वहाँ पर जाएगा और जब देखेगा आसपास कोई नहीं है तो वो भी तो पानी के अंदर कूदने की कोशिश करेगा ना। और वहाँ पर हम लोगों को पता है पिछले बीते कुछ दिनों में कितने सारे हादसे हुए हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और अभी चल रहा है प्रोग्राम फरीदाबाद की गलियों से। और देखो फरीदाबाद के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो देखो झील में जाने का सबका मन करता है, सबका मन करता है कि झील को देखें, सुंदरता निहारें। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। एक है फरीदाबाद में डेथ वैली और दूसरी है सिरोही झील। अब सिरोही झील में काफ़ी सारी जो हादसे हुए हैं उसके बाद अब प्रशासन ने आगे आकर उधर खुदाई कर दी, रास्ते की खुदाई कर दी ताकि कोई भी इंसान अपनी गाड़ी या बाइक आगे ना ले जा सके। वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगा दिए हैं और अब बोला गया है कि सुबह से शाम तक पुलिस वहाँ पर गश्त करती रहेगी और वहाँ पर जितने भी ग्रामीण लोग हैं, जहाँ वहाँ आसपास में जितने भी गाँव हैं, उन लोगों को भी बोला गया कि आप लोग भी हमारी मदद कीजिए ताकि कोई और इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठे। तो देखो यार फरीदाबाद जितना भी ज़्यादा वायरल हो रहा है रील्स में, सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपके सामने भी वो रील आती है जहाँ पर सिरोही झील को ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो उनको बोलिए कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी झील है ये और उसमें उतरना ही क्यों है। और देखो प्रशासन जब कल को वहाँ पर कुछ बोटिंग की व्यवस्था कर देगा तब की बात अलग है, बट अभी आप लोगों को वहाँ पर नहीं जाना है। तो जितने भी आपके दोस्त अगर पूछते हैं आप लोगों से कि भाई तू फरीदाबाद से है और फरीदाबाद में यार चल सिरोही झील घुमा ला या फिर डेथ वैली घुमा ला, तो उनको सीधा सीधा मना कर देना आप लोगों ने। और इसी के साथ साथ अभी रेडियो महारानी सुनते जाइए, फरीदाबाद की गलियों से में हम लोग फरीदाबाद की और भी अपडेट्स लेते रहेंगे, करते रहेंगे उनके बारे में चर्चा। मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना आई एम डन मान बनू की आवाज में सुनिए। इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुबह सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

कितना ज्यादा प्यारा गाना था ना ये, और ये गाना बहुत ज्यादा प्यारा था। इस गाने के साथ एक प्यारा सा इंसान आप सभी के साथ जुड़ चुका है, द मोस्ट वांटेड मुंडा है मेरा नाम और आप सभी का स्वागत है जी रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट। हाँ, फिर से अपनी तारीफ करनी चाहिए। देखो बार बार कोई और इंसान आपकी तारीफ करे ना करे, कोई आपको नार्सिसिस्ट बोल दे, बट आपको अपनी तारीफ करते रहनी है। यूनिवर्स को आपको मैसेज भेजना है, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं संस्कारी हूँ, मैं सुशील हूँ, जो भी है। चलिए अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि देखो फरीदाबाद में 40 से ऊपर के लेबर्स के लिए, उम्र के मतलब जितने भी लोग लेबर्स की एज 40 प्लस है ना, उन लोगों के लिए फ्री स्वास्थ्य जांच कल से शुरू हो चुकी है 7 मई से। और इसके तहत मतलब क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें उन टेस्ट करा सकेंगे वो लोग ESIC में जाकर, जैसे कि थायराइड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर टेस्ट, ये सब भी हो जाएंगे। साथ ही साथ उनकी डायग्नोस्टिक भी हो सकती है अगर उनको कोई भी परेशानी है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, ECG, इन सब की भी व्यवस्था मिलेगी। तो ये अभी 7 तारीख से शुरू हो चुकी है और अभी चलने वाली है कुछ दिन तक, जब बंद होने वाली होगी उससे पहले अपडेट आ जाएगा। तो अगर कोई भी इंसान मुझे सुन रहा है जो लेबर क्लास से बिलोंग करता है, जिनके पास ESIC कार्ड बना हुआ है, वो लोग प्लीज़ ज़रूर जाकर अपना स्वास्थ्य जांच करवाएं, और फ्री है ये पूरी तरह से, तो प्लीज़ आप लोग अपनी जाँच करवाइए। अगर आपके पास ESIC कार्ड नहीं है तो वो भी बनवा लीजिए, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस काम मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से आप बोलिए कि हाँ हमारा भी ESIC कार्ड बनवा दीजिए। और इस जांच से आपको जितनी बीमारियां हैं, जितने भी मतलब आने वाली बीमारियां हैं, इसके बारे में भी पता चल जाएगा, और जितने भी रिस्क हैं आगे आने वाले वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो ज़रा इसके बारे में सोचिए। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलने वाले हैं मेरे दोस्त। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और आप सुन रहे प्रोग्राम फरीदाबाद की गलियों से।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरले आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरले आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरले आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: बन्नों की सहेली से लेकर दीदी का दीवाना देवर पूरे सिनेमा की अपडेट मिलेगी ओनली इन फिल्मी फ्लेवर।
1: बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

चले दोस्तों, इस गाने के बाद फिर से लौट आया हूँ। अभी यहाँ बात करते हैं धुरंधर द वंश के बारे में, जहाँ किससे कहानियां धुरंधर के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बात करते हैं अब यहाँ पे बिमल और ब्रॉय के किरदार यानी कि शेरानी के बारे में। शेरानी की अगर बात की जाए तो लीडर और फिल्मी वेपन्स सप्लाई का दमदार विलन स्टाइल किरदार निभा, बिमल और ब्रॉय से काफी अनचंस तरीके से निभाते नजर आए, जिसके लिए सोशल मीडिया पर काफी तारीफें बढ़ गई। जब इन्होंने एक बात का खुलासा किया कि लगातार कई महीने तक ऑडिशन देते रहे, काफी इंटेंस ऑडिशन और फाइनली उन्हें शेरानी का किरदार मिला, इस प्रोसेस को उन्होंने अपने करियर टर्न पॉइंट बताया। बात की जाए तो 27 साल पहले दलेर महीने के हिट गाने हो जाएगी बल्ले बल्ले शूटिंग में बिमल ब्रॉय पहली बार स्क्रीन पर सर। जी हाँ, और उसी गाने वाली तस्वीर अब लोग शेयर करते नजर आ रहे हैं और कह रहे यही शख्स आज शेरानी साहब हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन किरदार निभाया और हर कोई एकदम से नहीं पहचान सकता कि यार ये वही शख्स है जो कि एक गाने में नजर आए थे छोटे से किरदार के साथ, और अब एक बेहतरीन किरदार से खूब वाह वाही बटोर रहा है ये इंसान। बाकी चर्चा करूंगा, सब पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके पर।
1: ए जय माता जी ने हम कहीं ने कहूँ के वहाँ फरे वादल फरे ने वायरो फरे पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

वेलकम बैक हमारे शो में, यानी कि फिल्मी क्लिप। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बेहतरीन स्टार विजय वर्मा की वेब सीरीज के बारे में। मटका किंग की ऑलरेडी रिलीज डेट अब ऑफिशियली अनाउंस की जा चुकी है। मटका किंग एक ग्रीमी ड्रामा क्राइम सीरीज है जो कि 1960 के बॉम्बे में सेट है और मटका बैटिंग कल्चर की कहानी को सबके सामने लाता है। मेन लीड में विजय वर्मा है जो 60s के एक ऐसे हाई स्ट्रीट कॉटन ट्रेडर ब्रज भट्टी का किरदार निभाते नजर आए। बाकी कास्ट में कृतिका कामरा, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र यादव, गुलशन ग्रोवर जैसे स्टार्स नजर आएंगे। 240 से ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज में इसको प्रीमियर किया जाने वाला। मेकर्स ने कहा है कि इसे अपने लिए पहली बड़ी ग्लोबल पाम इंडियन ड्रामा सीरीज बताते नजर आए, जिसका टोन हिस्टोरिकल फिक्शन और गैम्बलिंग कल्चर को सबके सामने लेकर के आएगा कि 60s बॉम्बे में मटका बॉक्स क्या कुछ लेकर के आया सबके सामने, वो एक कहानी हम सबको बताते नजर आएगी। बाकी चर्चा करूंगा, सुबह एक और ट्रैक।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

फिर से गाने के बाद फिल्मी फ्लेवर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अब यहां बात करते हैं एक और बढ़िया तेलुगु डेब्यू के बारे में। जी हां, अक्षय खन्ना अभी तेलुगु डेब्यू करने जा रहे हैं, जहां पे महाकाली कहानी शुक्राचार्य गुरु का पावरफुल किरदार निभाते हैं, जिसकी तैयारी और लुक ट्रांसफॉर्मेशन ने फैंस को काफी इम्प्रेस किया। महाकाली प्रशांत वर्मा की डायरेक्शन में बन रही कहानी है, जो की महाकाली की लेजेंडरी स्टोरी को नई और विजुअली ग्रैंड तरीके से दिखाने के साथ मेकर सबके सामने लाए। अक्षय खन्ना इसमें शुक्राचार्य के रूप में नजर आने वाले, जो हिंदू माइथोलॉजी में देव और दानवों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अब ये कहानी कितनी बेहतरीन होने वाली, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके तो अक्षय के फैंस क्या बॉस हर कोई तारीफें करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका फुल स्विफ्ट बैक हेयर, लंबे बियर्ड, आई कैचर गहना के साथ बेहतरीन किरदार के साथ सबके सामने आया। फैंस के रिएक्शन भी देखने को मिले और अब फैंस कह रहे हैं बॉस अक्षय खन्ना का ये जो टर्निंग पॉइंट आया है ना, अब ये टर्निंग पॉइंट लगता रुकने वाला नहीं है, ऐसे ही धमाल मचाते रहेगा। देखने आगे और क्या क्या होता, बाकी इसे चर्चा करूंगा, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक है आफ्टर दिस सॉन्ग और आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी। बात करते हैं अब यहाँ पे रश्मिका मंदाना कई बड़े बजट फिल्म प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही हैं, जिसमें कॉकटेल का सीक्वल, रानावई, पुष्पा का थर्ड पार्ट और एनिमल पार्क मायसा जैसी फिल्में शामिल हैं। यानी कि 2026 के लिए उनकी लाइनअप काफी ही धमाकेदार है। कॉकटेल सीक्वल की बात करें, 2012 की हिट कॉकटेल कहानी में अपना किरदार निभाते नजर आएंगी, जहाँ शाहिद कपूर, प्रीति सरन और रश्मिका मंदाना की तिगड़ी कमाई करेगी। वही रानावली एक एक्शन रोमांस थ्रिलर कहानी है, जिसमें रश्मिका अलग अलग अवतार वाली मजबूत विलन किरदार में सबके सामने आने वाली पुष्पा थ्री का इंतजार तो हर कोई कर ही रहा है। अल्लु अर्जुन लीड कर रहे हैं और रश्मिका फिर से पुष्पा फ्रेंचाइजी में बैक टू बैक देखने वाली। एनिमल पार्क एक बॉलीवुड के ऐसे एक्शन ड्रामा वाले जोनर में बनी फिल्म, जिसमें पैन इंडिया तरह के प्रमोट की जाने वाली है, जिसमें रोमांस के साथ साथ कुछ इंटेंस एक्शन सीन्स में भी नजर आएंगे। इंतजार रहेगा इन कहानी की रिलीजिंग का।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
4: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
3: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ, आवारा
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

हाँ जी, वक्त हो चला है अब फिल्मी गलियारे में सिनेमा के कलंदर की बातें करने का। जी हाँ, यहाँ पे एक ऐसी कहानी रिलीज हुई 80s के दौर की जो मल्टी स्टार, जहाँ दो बड़े सुपरस्टार्स एक साथ नजर आए। इन दो स्टार्स ने ऐसा कमाल किया कि हर कोई इनकी कहानी, इनकी इस ड्यूअल जोड़ी की तारीफें करता नजर आ। फुल मसाला एक्शन ड्रामा और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये कहानी जो कि हर किसी को एंटरटेन करती नजर आई और 80 के दशक की वो कहानी बन गई, जिसे कहानी को देखना, कहानी के गाने सुनना और इस जोड़ी की तारीफें करना हर जगह बस यही चर्चा है इस कहानी के बारे में। तो फिल्मी कैलेंडर में ऐसी कहानी की आज मैं बात करने वाला हूँ। अब कहानी का नाम है क्या और कौन से स्टार्स इसमें हमें दिखाई दिए थे बताऊंगा। थोड़ा सा थम जाइए और गौर फरमाइए कि ऐसे दो कौन से सुपरस्टार्स से एक्शन लेकर उसकी 80s के दौर में सिल्वर स्क्रीन पर आए थे। थोड़ा आप सोचिए और थोड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन इस खूबसूरत से गाने के बाद।

सो वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी है फ्लेवर। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिनेमा के कैलेंडर में ऐसी कहानी के बारे में जहाँ दो सुपरस्टार्स नजर आए थे जिनके नाम है राजेश खन्ना साहब और जितेंद्र। एक साथ ये दो बड़े नाम स्क्रीन पर आए तो फैंस वैसे ही उत्साहित हो गए। कहानी का नाम था मकसद। कहानी ने तहलका मचा दिया था अपने ही दौर में। साथ ही स्क्रीन पर ग्लैमर का तड़का लगाया श्रीदेवी और जया प्रदा। 80 का वो टाइम था जब मल्टी स्टारर फिल्म का मतलब होता था फुल पैसा वसूल। और ये मल्टी स्टारर कहानी ऐसी थी, चार बड़े स्टार्स, चार बड़े नाम, दो एक्शन हीरोज और दो उस दौर की ऐसी हीरोइंस जिनको हर कहानी में देखना पसंद किया करते थे फैन। अब देखिए, चार बड़े बड़े नाम हो, मल्टी स्टारर कहानी का दौर हो तो फुल पैसा वसूल तो होगा ही। तो 80 के दौर में मकसद कहानी ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। बॉस की बजट से पार छप्पड़ फार कमाई करते नजर आए और सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा दी। बात करेंगे इस कहानी के गानों के बारे में भी, लेकिन इन गानों की चर्चा करने से पहले सुना देता हूँ एक और खूबसूरत सा ट्रैक। ऑल योर रेडियो महारानी 89.6 FM को चढ़ते हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

चलिए सिनेमा के कैलेंडर में कहानी का नाम आपको बता ही चुका हूँ और यहाँ पे अब फिल्मी गलियारों में इसी कहानी के गानों की अगर बात करूँ, 80 का म्यूजिक मतलब रिदम, डांस और एनर्जी। फिल्म के गाने उस जमाने के टिपिकल डांस नंबर से भरे हुए, जहाँ स्टेज और कॉस्ट्यूम्स, मूव्स, सब कुछ ग्रैंड होता था। और वो डिस्को आया जहाँ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि डांस फ्लो के लिए बनाए जाते थे। जहाँ इन गानों की अगर बात की जाए, ओए ओए तिरछी टोपी वाले, आज फिर तुम पे प्यार आया, गोरी तेरे अंग अंग में, और एक और खूबसूरत गाना, प्यार तुमने किया ना याद रहा। ये गाने ऐसे थे जो इतने ज़्यादा हिट रहे थे बॉस की मकसद कहानी ने सबको अपने कानों से, किरदारों से और स्टोरी लाइन से हिला डाला। बात करें इस कहानी के बारे में तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया और टीवी पर बार बार दिखाई जाने वाली फिल्मों में शामिल रही कहानी। 80 के मसाले एंटरटेनर्स के फैंस हो तो मकसद डेफिनेटली आपको याद होगी, और अगर नहीं देखी तो दोस्तों मैं बात यही कहूंगा कि बॉस यंगस्टर्स भी एक बार इस कहानी को देखिए, आपको एक अलग ही अनुभव होने वाले कहानी देख करके 80s के सुपरस्टार्स और इस गानों के धमाल के साथ। बाकी ऐसी भी चर्चा करूंगा, उससे पहले कॉन्टैक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: मुझे मुआफ करो यारो, मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

जी वेलकम बैक है जी एक बार फिर से मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। जहाँ दोस्तों आज हमने सिनेमा के गलियारों में बहुत ही चर्चाएं करी, आने वाली कुछ कहानियों के बारे में, तो कुछ स्टार्स के ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि 2026 को फुल धमाल बना देने वाले हैं, तो वहीं सिनेमा के कैलेंडर में करी हमने मकसद कहानी की बात है। जहाँ इस मकसद कहानी है सुपरस्टार्स यानी मल्टी सुपरस्टार कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर ग्रैंड ओपनिंग करी और क्लोजिंग होते होते भी अच्छा खासा वक्त लगा, क्योंकि कहानी तो लंबे अर्से तक सिल्वर स्क्रीन पर तो लग रही और टीवी पर भी लोग इसको बार बार देखना पसंद भी किया करते थे। सिनेमा के गलियारों में ऐसी और भी चर्चाएं आप सबके लाद रहा हूँ कुछ नई कहानियों के बारे में, तो उसकी प्लेटफॉर्म की स्ट्रीमिंग रिलीजिंग ट्रेलर टीजर के बारे में और सिनेमा के कैलेंडर की कुछ और चर्चाएं की और कौन कौन सी कहानियां जिनको रिवाइव किया जाए। तो यार वो दौर एक ऐसा लगता है कि यार काश उस दौर की कहानियों को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया जाए तो क्या होगा, बताऊंगा ऐसी और भी चर्चा, लेकिन आज नहीं, अवश्य मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। मुझे बात है तब तो सुनते रहे रेडियो बाहर आने।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक के।

0: दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस एक्टर की है जिसने बताया कि हीरो दिखता कैसा है ये जरूरी नहीं, हीरो काम कैसा करता है असली बात वही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और इनकी कहानी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
2: यूपी का एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, वहाँ से एक लड़का निकलता है हाथ में केमिस्ट्री की डिग्री लेकर। कुछ वक्त नौकरी की पर दिल नहीं लगा। पता है दोस्तों, एक्टिंग का चस्का उन्हें ऐसा लगा कि वो दिल्ली पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पर एनएसडी में दाखिला लेना तो सिर्फ पहला कदम था, असली चैलेंज था अपना पेट भरना। नवाज ने वहाँ के एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी की। सोचिए, पूरा दिन गार्ड की ड्यूटी और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस। उन्होंने ठान लिया था कि काम चाहे कोई भी हो, मंजिल से ध्यान नहीं हटाना है। 1996 में जब वो मुंबई आए तो उन्हें लगा था कि उनका हुनर उन्हें रास्ता दिखा देगा, पर मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो से गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां उनके लुक्स उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
1: और बाद में कैसे उनका स्ट्रगल चालू हुआ करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनते जाइए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप लोग जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जहां नवाज के पास ना सर पर छत थी और ना ही जेब में पैसा, सिर्फ एक पुराना खत था जो उन्हें हर रोज गिरने से बचाता था। वो खत किसका था, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में और उनकी स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: मुंबई में नवाज का कोई गॉडफादर नहीं था। वो ऑडिशंस देते पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आप हीरो जैसे नहीं दिखते। साल दर साल बीतते गए, वो 12 साल तक छोटे मोटे रोल्स करते रहे, कभी सरफरोश में एक मिनट का रोल तो कभी मुन्ना भाई MBBS में एक पॉकेट मार। पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते और उनके लिए खाना बनाते ताकि रहने की जगह मिल सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो टूटने लगे थे, तब उनकी माँ ने उन्हें एक खत लिखा। उसमें लिखा था, बेटा कचरे के ढेर की जगह भी 12 साल में बदल जाती है, तू तो फिर भी इंसान है, हिम्मत मत हारना। बस वही एक लाइन उनका सहारा बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे।
0: और कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने छोटे छोटे रोल्स के बाद करा फैजल खान का रोल, द आइकॉनिक रोल, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हर इंसान की लाइफ में एक सेटबैक आता है और फिर हर इंसान कमबैक करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्ट्रगल था, अब देखिए असली धमाका, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जिसने रातों रात बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड गुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उनकी लाइफ की स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: कहते हैं ना कि टैलेंट को आप ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। 2012 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि पूरा बॉलीवुड देखता रह गया। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और पर्दा फट गया। नवाजुद्दीन जब फैजल खान बनकर स्क्रीन पर आए तो लोगों को समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नवाजुद्दीन का उन सारे रिजेक्शंस को जवाब था जो उन्होंने बरसों तक झेले थे। कहानी फिल्म के गुस्से वाले ऑफिसर से लेकर वासेपुर के गैंगस्टर तक नवाज ने रातों रात सबको अपना फैन बना दिया। जो इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करती थी आज वही उनके पीछे लाइंस लगाए खड़ी थी। उनका स्ट्रगल अब हिस्ट्री बन चुका था।
0: और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से रेड कार्पेट तक का सफर किया, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, एंड मेरे साथ स्टोरी नरेट कर रही है रीत।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा?

0: सोचिए, एक वक्त जिस शख्स ने दूसरों के बंगलों के बाहर पहरा दिया, आज उसका अपना घर देखकर दुनिया दंग रह जाती है। वॉचमैन की वर्दी से लेकर कांस के एक्सपेंसिव टक्सीडोस तक, ये सफर सिर्फ सक्सेस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लेट्स टॉक अबाउट हिज फाइनल फ्लाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और कैसे उन्होंने रेड कार्पेट तक का सफर किया। करेंगे इसके बारे में बात, और इसके बारे में नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: आज का सीन देखिए दोस्तों, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी वॉचमैन थे, आज कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में उनका बोलबाला है। मुंबई में उनका अपना एक शानदार बंगलो है जिसे उन्होंने नाम दिया है नवाब। ये उनके पिता के लिए एक सम्मान है और उनकी अपनी मेहनत का इनाम। नवाजुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उड़ने से नहीं रोक सकती। उनकी ये उड़ान आज हर उस यंग ड्रीमर के लिए एक उम्मीद है जो जीरो से शुरू कर रहा है।
0: जहां लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफर चुना, क्योंकि असली पहचान मंजिल से नहीं संघर्ष से बनती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। मैं फिर मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: You got to.
1: Pushpa, I hate water wasting रे. जा जाके टंकी बंद कर.

इसी गाने के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं एक ऐसा शो जहां कहानियां सिर्फ सक्सेस की नहीं होती बल्कि उन सपनों की होती हैं जो कभी बहुत छोटे से शुरू हुए थे। इस शो का नाम है बिजनेस अनप्लग्ड और यहाँ मैं आपको मिलवाती हूँ उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को लेकर बहाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें ही अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि सच कहूँ तो किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उनके पीछे होती है एक लंबी जर्नी। कभी गरीबी, कभी स्ट्रगल, कभी एक ऐसा दिन जब लगा कि शायद अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं रुकते नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसा लड़का जिसके घर की हालत इतनी मुश्किल थी कि कई बार कपड़े और चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिनकी माँ घर चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर कॉलेज जाता और कॉलेज शुरू होने से पहले घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करता क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन वही लड़का बाद में एक ऐसी कंपनी खड़ी करता है जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक में अपना नाम बना चुकी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू आज हजारों करोड़ रुपए में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू होकर एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर दिया। उस नाम के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल से जियो।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग. मैं आपके साथ हूँ गीत. और जहाँ मैंने बात की अभी थोड़ी ही देर पहले एक ऐसे इंसान की जिनका बचपन बहुत साधारण था, एक ऐसा लड़का जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिनकी माँ घर को चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर वो कॉलेज जाते थे, घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे. तो अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं रिवील करने जा रही हूँ आज के बिजनेस अनप्लग्ड के बिजनेस टाइकून का नाम. तो आज की कहानी है डॉक्टर ए वेलुमणि की. जी हाँ, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और MD. आज के वक्त में थायरोकेयर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी है. इस कंपनी के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स हैं. और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है. आज इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 6,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक ऐसी जर्नी छुपी हुई है जिसमें गरीबी भी थी, स्ट्रगल भी था और कई ऐसे मोमेंट्स भी थे जब सब कुछ आसान नहीं था. तो आखिर कैसा था ए वेलुमणि का चाइल्डहुड, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का धीरे धीरे साइंटिस्ट बना और फिर साइंटिस्ट से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उनकी फैमिली, एजुकेशन और लाइफ की शुरुआती इयर्स की कहानी आज मैं बताने वाली हूँ. लेकिन अभी वक्त है गाने का. गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आप मेरे साथ बने रहिए.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

साथ हूँ गीत और आज मैं बात कर रही हूँ थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर ए वेल्यूमनी के बारे में। क्योंकि अक्सर हम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो जर्नी होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और वेल्यूमनी की स्टोरी तो सच में एक ऐसी स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर फोकस स्ट्रांग हो तो रिसोर्सेज की कमी भी इंसान को रोक नहीं सकती। ए वेल्यूमनी का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। इनका परिवार बहुत ही ज्यादा साधारण था, बल्कि यूं कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर थी। इनके फादर एक पुअर फार्मर थे, लेकिन इनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। मतलब खेती करते थे लेकिन जमीन इनकी नहीं थी। घर में चार बच्चे थे और इतने बड़े परिवार को चलाना आसान नहीं था। ऐसे में वेल्यूमनी की माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली। वो दूध बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। इमेजिन कीजिए, जब घर में इनकम इतनी लिमिटेड हो तब बच्चों को पढ़ाई करवाना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वेल्यूमनी की माँ चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और शायद यही बिलीव था जिसने वेल्यूमनी के अंदर भी एडुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पैदा किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो कोयम्बटूर चले गए। लेकिन यहाँ चैलेंज और बड़ा था। सिटी के कॉलेजेस की फीस उस टाइम लगभग 1,000 से 3,000 रुपए तक होती थी। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने एक ऑप्शन चुना, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय। ये कॉलेज शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। यहाँ फीस कम थी, करीब 300 रुपए, लेकिन हॉस्टल का खर्चा फिर भी उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। उन्हें एक गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया जो फ्री था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ तक आने जाने का खर्च भी उनके लिए मुश्किल था। बस का किराया एक तरफ लगभग 60 पैसे था, मतलब महीने का लगभग 30 रुपए। ये भी उनके बजट से बाहर था। लेकिन वेल्यूमनी ने यहाँ भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। उस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन का 3 मंथ स्टूडेंट पास सिर्फ 7 रुपए था और यही उनका डेली रूटीन बन गया। वो रोज सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ते थे जो उन्हें 6:25 पर कोयम्बटूर पहुंचा देती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज लगभग 9 बजे शुरू होता था, मतलब उनके पास लगभग 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होता, और शाम को भी ट्रेन 6:10 की थी, तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी काफी टाइम बच जाता था। यानी हर दिन उनके पास लगभग 6 घंटे का खाली समय होता। अब कोई भी स्टूडेंट होता तो शायद इस समय को वेस्ट कर देता, लेकिन वेल्यूमनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस टाइम को अपनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बना लिया। वो रोज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लगभग 1,000 दिन तक और करीब 6,000 घंटे इन्होंने प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई की। कभी कभी लाइफ हमें परफेक्ट एनवायरमेंट नहीं देती, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इंसान कहीं भी सीख सकता है। वेल्यूमनी बाद में कहते हैं, दैट रेलवे प्लेटफॉर्म एक्चुअली मेड मी अ साइंटिस्ट। और सच में वही डेडिकेशन उन्हें आगे लेकर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने बीएससी डिग्री पूरी कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी लाइफ आसान नहीं हुई। अब एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था और वो था करियर शुरू होने का। उन्होंने छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन वहाँ जो उनको सैलरी मिलती थी वो इतनी कम थी कि शायद आज के टाइम में सुनकर लोगों को यकीन भी ना हो। लेकिन उस जॉब ने इनको बहुत बड़ा लेसन दिया और वही लेसन आगे चलकर उनकी जर्नी की शुरुआत बनने वाला था। क्या था वो मोमेंट, कैसे एक साइंटिस्ट बनने की जर्नी शुरू हुई और लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो वेल्यूमनी को बिजनेस की तरफ लेके आया, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास कापे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं ए वैल्यू मनी के बारे में। ए वैल्यू मनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और किस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो घंटों तक पढ़ते रहे, लेकिन असली टेस्ट तो शुरू होता है जब पढ़ाई खत्म हो जाती है और लाइफ में करियर स्टार्ट करने का टाइम आता है। वैल्यू मनी की कहानी में भी यही फेज आया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कोयम्बटूर की एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की। अब सैलरी सुनिए, सिर्फ 150 रुपए महीना। आज के वक्त में शायद ये बहुत छोटा अमाउंट लगे, लेकिन उस टाइम ये कोई बड़ी सैलरी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वैल्यू मनी अपनी सैलरी में से 100 रुपए हर महीने अपनी माँ को भेज देते थे और बाकी 50 रुपए में पूरा खुद का महीना मैनेज करते थे। इमेजिन कीजिए, 50 रुपए में पूरा महीना। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक ये कंपनी बंद हो गई और वैल्यू मनी बेरोजगार हो गए। अब सिचुएशन फिर वही थी, अनसर्टेनिटी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक प्रॉब्लम के रूप में आती है। वैल्यू मनी ने हार नहीं मानी, इन्होंने अप्लाई किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था BARC में काम करते हुए। इन्होंने सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि अपनी हायर स्टडीज भी पूरी की। धीरे धीरे चलकर रिसर्च फील्ड में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर वो साइंटिस्ट बन गए। लगभग 14 साल तक इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम किया। एक स्टेबल जॉब, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन, कई लोग यहीं सेटल हो जाते। लेकिन वैल्यू मनी के माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट बार बार आता था, क्या मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूँ? और यही थॉट धीरे धीरे ड्रीम बन गया। लेकिन ड्रीम को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है रिस्क, करेज और सपोर्ट। और वैल्यू मनी की लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट था जिसने उस ड्रीम को रियलिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो सपोर्ट था उनकी वाइफ का। कौन थी वो और कैसे इन्होंने वैल्यू मनी के साथ मिलकर एक छोटी सी लैब से एक बड़ी कंपनी की फाउंडेशन रखी, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ ए वैल्यू मनी के जर्नी के बारे में। कैसे इन्होंने साइंटिस्ट के तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगभग 14 साल तक काम किया, एक स्टेबल जॉब, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लाइफ आराम से चल सकती थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कम्फर्ट जोन में रहना पसंद नहीं होता। वैल्यू मनी के माइंड में भी एक थॉट बार बार आता था, कुछ अपना करना है, समथिंग ऑफ माई ओन। और आखिरकार 1995 में इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी सेविंग से एक छोटी सी लैब शुरू की। ये पैसा भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लगभग 1 लाख, जो उनके पीएफ से आया था, और यहीं से शुरू हुई थायरोकैट टेक्नोलॉजीज की जर्नी। लेकिन शुरुआत भी आसान नहीं थी। उनकी लैब मुंबई में थी और शुरू के दिनों में सिर्फ रोज 2 सैंपल्स आते थे। यस, सिर्फ 2 सैंपल्स अ डे। कई लोग ऐसे मोमेंट पर शायद हार मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू मनी ने पेशेंस नहीं छोड़ा। उनका विजन बहुत क्लियर था, डायग्नोस्टिक टेस्ट को अफोर्डेबल बनाना, ताकि आम लोग भी आसानी से मेडिकल टेस्ट करवा सकें। धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया, कम कॉस्ट, हाई वॉल्यूम और वाइडर रीच। और यहीं पर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी था। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उनकी वाइफ सुमति वैल्यू मनी ने SBI की अपनी जॉब छोड़ दी और

बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन उसी समय वाइफ सुमति वैल्यूमनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। 12 फरवरी 2016 को वो दुनिया से अलविदा कह गई और कुछ ही महीनों बाद कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ जो लगभग 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वैल्यूमनी अक्सर कहते हैं, मेरी अर्ली लाइफ की इंस्पिरेशन मेरी माँ थी और मेरी बिजनेस सक्सेस की वजह मेरी पत्नी थी। उनकी जर्नी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है, सक्सेस हमेशा बड़े रिसोर्सेज से नहीं आती, कभी कभी सक्सेस सिर्फ फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। और शायद इसी लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का आज हजारों करोड़ की कंपनी का फाउंडर बन गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और याद रखिए, ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का करेज बड़ा होना चाहिए। टेक केयर एंड कीप ड्रीमिंग बिग और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: तेरी बातों में बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया।
2: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
3: सुन भाई सुरेंद्र।
4: हाँ भाई सुरेंद्र।
3: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
4: सही कह रहे सुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
0: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे दोस्त।

information, log on to nbsp.in or call voter helpline 1950.

89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली, जहाँ अभी हमने बात की अपातानी ट्राइब के बारे में, जाना उनकी जिंदगी जीने का तरीका। वहीं आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इनके फार्मिंग का तरीका, जो कि कहा जाता है कि बेहद यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक का टैग ढूंढ रही है, वहीं जीरो उसे जी रहा है। कहा जाता है कि अपातानी फार्मिंग सिस्टम बिना फर्टिलाइजर्स, बिना मशीन्स के चलती है। यही रीजन है कि जीरो को वर्ल्ड का बेस्ट सस्टेनेबल मॉडल्स में माना जाता है। वो कहा है कि जो जमीन का ख्याल रखे, जमीन उसे कभी भूखा नहीं रखती। फार्मिंग का तरीका तो पता लगा कि कितना यूनिक है। एक और चीज है जो इस वैली को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है जीरो वैली में म्यूजिक फेस्टिवल। अब जरा सोच कर देखिएगा, इतनी शांति के बीच जब म्यूजिक बजता होगा तो कैसा लगता होगा। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल यानी इंडिया का एक यूनिक आउटडोर इंडी फेस्टिवल। ये इतना ज्यादा यूनिक है कि यहाँ लाउड म्यूजिक नहीं, सिर्फ नेचुरल ऑक्यूस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहा है कि यहाँ गाने भी पहाड़ों से पूछ कर बजते हैं। अब बात कर ही रहे हैं जीरो वैली की, तो मौसम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। आगे जानेंगे कि आखिर जीरो वैली का मौसम कैसा है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जीरो वैली हर मौसम में अलग लगता है, पर कभी खुद को नहीं बदलता। यही खासियत है इस वैली की। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ, और शो चल रहा है कल्चर कारवा। बात कर रही थी जीरो वैली के मौसम के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ का मौसम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। सुबह धुंध होती है, शाम को हल्की ठंड होती है, रात गहरी शांति होती है। वो कहा है कि कुछ जगह वक्त से तेज नहीं चलती, वहां वक्त रुककर सांस लेता है। तो कुछ ऐसी है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली। और जीरो वैली के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अक्सर जीरो वैली आपको बदल देता है। तो आइए जानें कि क्यों जीरो आपको बदल देता है। कहा है कि लोग जीरो घूमने जाते हैं, पर वापस थोड़े बदले हुए आते हैं। ये वैली, ये जगह आपको धीमा कर देता है, शायद इसीलिए इसका नाम जीरो रखा गया। यहाँ सिग्नल कम पर कनेक्शन स्ट्रांग होता है। वो कहा है कि जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ दिल कनेक्ट होता है। कुछ ऐसा ही है जीरो वैली। अक्सर यहाँ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन आते वक्त जीरो को अपने साथ ले आते हैं। जीरो की यादें, जीरो का एहसास, जीरो का मौसम, जीरो की याद, सब कुछ अपने साथ लिए अपने शहर वापस आ जाते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और भी क्या कुछ खास है इससे जुड़े हुए ट्रिविया के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जीरो की अपनी एक अहमियत होती है, जहाँ भी लग जाए बात कुछ और ही हो जाती है। इसीलिए शायद इस जीरो वैली को लोगों से इतना प्यार मिला। कहा जाता है कि एक छोटी सी बात जो जीरो को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है, यूनेस्को बायोस्फीयर रीजन के पास है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी अरुणाचल की जान है। वो कहा है कि जीरो वैली कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो शोर कम करता है और खुद से मिलवाता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी कभी तेज लगने लगे ना, तो जीरो वैली याद कर लेना। कल्चर कारवा का आज का सफर आपको लेकर आया एक ऐसी वैली की तरफ जिसका नाम ही जीरो था, यानी कि जहां रफ्तार की जरूरत ही नहीं, जहां लोग खुद से मिलने आते हैं, पहाड़ों से बात करते हैं और नेचर को जानते हैं, जहां का म्यूजिक, खाना और लोग सभी बेहद प्यारे हैं। कल्चर कारवा का आज का सफर फिलहाल यहीं खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे एक नए जायके के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? नहीं, मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट टाइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: गाइस, साल 2020 याद है आपको? साल 2020 में ऐसा हुआ था कुछ जिसने हम सबका घर से बाहर निकलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। अब सोचो साल 2020 अगर रिपीट हो जाए तो फिर क्या होगा। और दुनिया में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडर, आप सभी के साथ। बस बताने आया था कि मैं आ गया हूं। सुनिए इस गाने को, वापस आके बताता हूं क्या क्या बातें करने वाले आज हम लोग।
5: पंजाब

0: भी बाप खोल।
1: दुनिया में कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। लोग कह रहे हैं कि साल 2021 में जब वायरस की वैक्सीन लगी थी हम लोगों को तो हमारी बॉडी में नैनोबॉट्स छोड़ दिए गए थे। और कुछ लोग कह रहे हैं ये जो स्टारलिंक की सैटेलाइट घूम रही है हमारा मन पड़ रही है। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं मगर लोगों को तो काम है बोलना, और हम कहते भी तो हैं। चार लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इन्हीं लोगों के बारे में बात करने के लिए मैं आ चुका हूँ जी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और साल 2020 की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले मैं। साल 2020 क्या आया था उस टाइम, COVID-19 याद है ना आप लोगों को। घर पे बैठे थे हम लोग सब लोग। और अब आ गया है हंता वायरस। मगर उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज है एक और चीज, और वो ये है कि साल 2022 में किसी ने प्रिडिक्शन कर दी थी। हाँ सच बता रहा हूँ, साल 2022 में किसी ने प्रिडिक्शन कर दी थी। कैसे करी थी, क्या हुआ था, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और इसके साथ साथ क्या आप लोगों को लगता है कि AI हमारा दिमाग पढ़ रहा है? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ चीजें सोच रहे होते हैं और वो एड्स हमारे सामने आने लग जाती है। जस्ट इमेजिन आप लोग बात कर रहे हो किसी अपने दोस्त से और फिर उसके बाद आप बस मन में सोच रहे हो कि यार छोले भटूरे खाने को मिल जाते तो मजे आ जाता, और सोचिए छोले भटूरे की अगर ऐड आ जाए सामने तो ऐसी चीजें हो रही है अभी। और साथ ही साथ अगर हंता वायरस की मैंने बात करी है तो इसके साथ में TB के केसेस भी बढ़ रहे हैं दिल्ली NCR में। तो इन सब चीजों के बारे में करने वाले हम बात अगले 3 घंटे तक, मतलब 3 घंटे तक और भी बातें होंगी, फरीदाबाद के बारे में अपडेट्स भी होंगी। तो डोंट वरी, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने लेकर आने वाला हूँ, और फरीदाबाद की जब जब अपडेट लेकर आता हूँ तो कोई ना कोई सिंगर फरीदाबाद का भी ले आता हूँ आप लोगों के लिए। तो फरीदाबाद के एक सिंगर यानी कि MC Square की आवाज में आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दिल्ली में टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा तेजी से टीबी फैल रही है। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। देखो मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, देखो वीकेंड है और देखो बहुत बोल चुका हूं, बट वीकेंड है, वीकेंड पर कुछ अपडेट लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो अभी तक अपडेट ये आई है कि 24 मार्च से लेकर 5 मई तक करीब करीब 12,000 से भी ज़्यादा मरीज मिले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, और इन सब में 1300 तो बच्चे ही हैं और 10,000 से ज़्यादा अपने जो 18 प्लस लोग होते हैं वो हैं। तो टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं, टीबी वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखो आप लोगों को इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी टीबी का। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, देखो टीबी जानलेवा है, बट अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखोगे तब है वो जानलेवा। अगर आप पूरे प्रिकॉशंस लेते हो, अगर आप दवाई टाइम से लेते हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखो टीबी की जो मैंने बात करी है, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा की खांसी होती है आप लोगों को, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। और टीबी जानलेवा सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप लोग उसको सीरियसली नहीं लोगे। तो अब देखो अगर मैं सीरियसली बताऊं आप लोगों को, तो मैं भी एक साल टीबी से ग्रसित हुआ था, बट मैंने टाइम से दवाई ली और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक लाइव एंड एक्सक्लूसिव एग्जांपल आप सभी के सामने बैठा हुआ है। तो टीबी को हम मिलकर हराएंगे, और दिल्ली एनसीआर में जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि ये सारे के सारे केसेस कम हो जाएं। चलो एक बार वो टीबी के केसेस भी कम हो जाएंगे, मगर साल 2020 में जो कोविड आया था उसके बाद एक इंसान ने प्रिडिक्शन करी थी, क्या थी वो प्रिडिक्शन वो भी बताऊंगा, और क्या है हंता वायरस इसके बारे में भी करेंगे बात, मगर इस गाने के

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

साल 2019 अक्टूबर और नवंबर का टाइम था जब कोविड-19 नाम की बीमारी चाइना में निकल के आ रही थी और सब लोग सिर्फ ये सोच रहे थे ये तो सिर्फ चाइना का सीन है, ये इंडिया में कैसे आएगा या फिर दुनिया में कैसे फैल सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो जितना हल्के में हम लोगों ने स्टार्टिंग में कोविड को लिया था, मुझे लगता है उतना ही सीरियसली अब हमें हंता वायरस को लेना पड़ेगा। हंता वायरस एक नया वायरस आया मार्केट में और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे टाइम लगता है ऑलमोस्ट 6 हफ्ते, पूरा का पूरा जो पनपता है ना 6 हफ्ते के अंदर पनप जाता है और इंसान के अंदर छोटी सी बीमारी लेकर आएगा, जैसे फ्लू में नहीं होता, हल्का सा जुकाम बुखार, आपको थाइस में दर्द होगा, आपको बैक में दर्द होगा, हड्डियाँ बदन टूटना वगैरह वगैरह, और सर दर्द होगा, थकान होगी, ये सारे सिम्टम्स है इसके। फिर उसके बाद ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा और जैसे ही इसका असर बढ़ेगा तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, साथ ही साथ किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी बस सिंपल सी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जो भी इंसान अभी बाहर से आ रहा है, विदेश से इंडिया आ रहा है, वो प्लीज़ खास तौर पर नज़र रखें और WHO ने इस पर क्या कहा है ये भी मैं बताऊँगा मगर थोड़ी देर बाद। देखो अभी घबराने की बात है नहीं वैसे, बट स्टिल हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: संसार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।
2: Oh, so-

एक के बाद एक नई नई बीमारी आ रही है मार्केट में और अब आ चुका है हंता वायरस। हंता वायरस क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट जो भी इंसान अगर अभी मुझसे जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूँ, हंता वायरस एक नया टाइप का वायरस आया है मार्केट में जो पहले लाएगा बुखार, सर्दी, जुकाम और फिर उसके बाद और भी दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देगा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एक शिप से भरी यात्री थे माफ कीजिएगा, एक यात्रियों से भरी शिप थी और उस शिप में बहुत सारे लोग थे जहां पर 5 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि हाँ ये हंता वायरस से जूझ रहे हैं और उसमें से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और बता दूँ आपको, हंता वायरस आउटब्रेक हो चुका है। 12 देशों को अलर्ट जारी कर दिया गया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, तो इन सब में इंडिया अभी फिलहाल नहीं है, बट स्टिल 2 इंडियंस थे उस क्रूज शिप के अंदर जहां पर ये आउटब्रेक हुआ। और हंता वायरस के बारे में एक इंसान ने पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी थी आज से टोटल 4 साल पहले। कौन था वो इंसान, करेंगे उसके बारे में बात, क्योंकि वो कोई साइंटिस्ट नहीं और वो है कौन ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अकाउंट पूरी तरह से खाली पड़ा है। क्या है अकाउंट, करेंगे सब चीजों के बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर अभी फिलहाल वीकेंड के लिए शाम का वाला गाना, मगर अभी शाम ढंग से हुई नहीं है तो फिर भी इस गाने को एंजॉय कीजिए। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

दुनिया में ना बहुत कुछ चीजें अजीबोगरीब हो रही है और उनमें से एक है हंता वायरस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। और मैं जो हंता वायरस की बात कर रहा हूं वो ये है कि ये नया वायरस है जिसका मतलब छूट चुका है वो, और लोगों में घुस रहा है ये वायरस। वैसे ये होता है चूहे और गिलहरियों में, मगर इंसान में अगर घुस जाए तो फिर बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, वो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भाई दुनिया में कुछ कुछ चीज़ें अजीब हो रही है। एक अकाउंट था जो कि साल 2022 में एक्टिव था, उसने 11 जून 2022 को प्रेडिक्शन की थी कि 2023 में कोरोना खत्म हो जाएगा। ये बात सबको पता है, 2023 में कोरोना ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, मगर साल 2026 में हंता वायरस शुरू हो जाएगा। ये अकाउंट था किसका था कुछ नहीं पता। ये अकाउंट ने ट्वीट किया था, उस टाइम ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स हो चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वहां पर इसने ट्वीट किया था। इसका नाम है रीस द फ्यूचर। भाई ऐसा नाम है क्या? चलो इसका बायो था वैसे रीड्स द फ्यूचर, ये फ्यूचर पढ़ लेता। और साल 2026 में सच में हंता वायरस आउटब्रेक हुआ है, और टोटल चार पोस्ट किए गए थे साल 2022 में। उसके बाद इस बंदे ने कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया, और ये बंदा है कौन ये भी किसी को नहीं मालूम। और बता दूं आपको, एक इंसान से दूसरे इंसान में हंता वायरस फैलने की आशंका अभी बहुत कम है, बट स्टिल है। तो हम लोग दुआ करेंगे कि हंता वायरस इंडिया में ना आए और फिर से एक और बार हम लोगों को लॉकडाउन ना देखना पड़े, तो ज्यादा ही बेटर है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना मिक्स।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट
1: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

ये गाना ना मैंने बचपन में सुना था, और बचपन वाले दिन ज्यादा अच्छे थे जब कीपैड वाला फोन हुआ करता था, उसमें हम लोग वो स्नेक वाली गेम खेल के भी ना खुश रहते थे बहुत ज्यादा। मगर आज की डेट में हमारे पास फोन है, उसमें गेम्स की भंडार है, मगर टाइम किसके पास है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक गेम डाउनलोड करी। अब गेम का नाम नहीं लूँगा क्योंकि गेम थोड़ी सी थी, मतलब मार धाड़ वाली गेम थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट स्टिल उसमें पूरा स्नाइपर वनाइपर चलाओ और लोगों को गोलियाँ से, ठीक है समझ गए ना आप लोग कौन सी गेम थी। तो वो गेम मैंने डाउनलोड करी, मैंने खूब खेला, फिर उसके बाद मैं पक गया, मैंने कहा छोड़ो यार, रख देते थे साइड में। फिर उसके बाद मेरा मन किया कि वो जो बचपन में हम लोग वीडियो गेम नहीं लेकर आते थे मार्केट से, 300 400 500 रुपए की जो वीडियो गेम आती थी, जो टीवी से कनेक्ट हो जाती थी, जिसमें एक कैसेट लगती थी चिप, वो जो ग्रीन कलर की चिप होती थी, उसमें एक बीच में ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सा डॉट होता था जैसे न्यूक्लियस कहते थे हम लोग, तो वो वाली गेम की मुझे बड़ी याद आई। एंड आई वाज लाइक यार मारियो खेलने का बहुत मन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जब मैं सोच रहा था तो मुझे याद आया अचानक से कि AI आ चुका है अभी मार्केट में, और AI से जब भी बात करो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आ जाता है। और अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि AI हमारा दिमाग तक पढ़ ले रहा है, क्या ये सच है? बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। और अभी रिसेंटली कुछ लोग, कुछ क्रिएटर्स ऐसे ऐसे किस्से शेयर कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद और भी ज़्यादा डर लग रहा है, डर भी लग रहा है और क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि ऐसा सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है वो बताऊंगा आप सभी को मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए वंस अगेन एक और मैशअप गाना, सुनिए इस गाने को, वापस आकर बात करते हैं AI की कि क्या वो हमारा दिमाग पढ़ रहा है या फिर नहीं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है दिल्ली के एक लड़के की, और उस वीडियो में वो लड़का बता रहा है कि कैसे वो घर में सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसका सिर्फ वाइपर टूट गया। उसने कुछ भी नहीं बोला कि मेरा वाइपर टूटा है या फिर ओ शिट मेरा वाइपर टूट गया, ऐसा वैसा उसने कुछ नहीं बोला। मगर उसके पास 5 मिनट बाद फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि वाइपर आप लोग मंगा सकते हैं अपने क्विक कॉमर्स ऐप से, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जैसे ही ये वीडियो मैंने देखी, सबसे पहले क्यूरियोसिटी जगी कि भैया चलो कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। तो कमेंट में लोग कमाल के मिलते हैं, और इंडिया है ये बॉस, इंडिया में तो अलग अलग लोग मिलेंगे। एक का कमेंट था कि जब COVID-19 की आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी ना, तो हमारी बॉडी में नैनोबॉट्स छोड़ दिए गए थे, अब वो AI से लिंक्ड है और फिर वो हमारा दिमाग पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। चलिए दूसरा कमेंट जब मैंने पढ़ा तो वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो कह रहा था कि एलोन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट है ना, वो आसमान में घूम रही है और वो हमारा दिमाग तक पढ़ ले रही है, वो हमारे दिमाग को स्कैन कर ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ जब मैं कमेंट सेक्शन में और पढ़ता गया तो लोगों के भी कमेंट्स थे कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने बस कुछ चीज़ सोची है और उसकी एड्स हम लोगों को आनी शुरू हो गई है। एंड ये मेरे साथ भी ऑलमोस्ट 1 से 2 बार तो हो चुका है। मैं 1 से 2 बार हुआ है तो मैं उसे कोइंसिडेंस मान लूँगा, बट अगर शायद लगातार होने लग जाए जब मेरे साथ, तब मैं बोलूँगा कि हाँ AI हमारा दिमाग पढ़ रहा है। तो इस पर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस जरूर जानना चाहूंगा। नंबर है जी 9654896896। आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

ऑफिस की चाय और ऑफिस का एसी हम लोगों को बना रहा है बोरिंग इंसान। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज एक रिसर्च में पता लग गई है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ऑफिस का जो एसी है और ऑफिस की जो चाय या फिर कॉफी है वो हम लोगों को बोरिंग तो बना ही रही है, साथ ही साथ बीमार भी कर रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बताया कि देखो ऑफिस में जो एसी होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ऑफिस में जाके, काम, बिल्कुल काम करते हैं सभी लोग। कुछ होते हैं हमारे ऑफिस में जो काम नहीं करते और काम करने का नाटक करते हैं, उन लोगों को भी साइड में रख देते हैं। देखो ऑफिस में जब हम लोग काम करते हैं बहुत देर तक बैठे रहते हैं और एसी चल रहा होता है, फिर एसी से जो ठंडक मिलती है ना, उससे हमारे अंदर जो हमारे अंदर सिग्नल्स मिलते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसी की हवा से ड्राइनेस बढ़ती है हमारी बॉडी में, जिससे डिहाइड्रेशन भी बढ़ता है, तो ये एक तरह से आपको बीमार कर सकता है। और अच्छा, अब बात करते हैं कॉफ़ी और चाय की। आई नो काफ़ी सारे ऑफिसेज में मशीन लगी होती है कॉफ़ी की। चाय तो चलो एक बार बन गई, दो बार बन गई, मैक्सिमम तीन बार बन जाती है चाय ऑफिस में, बट एक या दो बार भी अगर आप चाय पीते हो या फिर उसके अलावा आप कॉफ़ी पीते हो, तो इन सबसे क्या होता है, इन सबसे हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। और जैसे ही वाटर इनटेक कम होता है तो चाय कॉफ़ी पानी की जगह ले लेती है, इसलिए थकान और भारीपन हम सभी को महसूस होते रहता है। तो मैं तो इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ ऐसा सच में होता है। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए और आप लोग भी बताइए कि क्या आप लोगों को भी बीमार कर रहा है ऑफिस का एसी और ऑफिस की चाय और ऑफिस की कॉफी, बताइएगा जरूर। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज में ये गाना खंड लग दी ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ सालाना कमाने वाली महिला आज घर घर में सफाई कर रही है, और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। वक्त बलवान होता है, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, तो ये एक एग्जांपल है समय बलवान होने का। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ये इंडिया का मामला नहीं है, मगर हाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़रूर इंडियन है। और ये पूरा का पूरा किस्सा है लंदन में कभी 1 करोड़ कमाने वाली एक लेडी थी, वो अब अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई हैं। अब उनका कहना है, देखो मेरे को जो जॉब चाहिए थी वो वाली जॉब तो मुझे मिली नहीं, तो इसीलिए अब मैं एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स की सफाई का काम कर रही हूँ। और देखो होता है, इंसान काम करते रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो अगर घर पे बैठे रहेंगे तो फिर उससे हमारे शरीर अकड़ सकता है, एक तो पैसे भी तो नहीं मिलेंगे ना। तो ये लेडी अभी एयरबीएनबी में अपार्टमेंट्स में सफाई का काम कर रही है, और वो कह रही है कि मेलबर्न का मार्केट जो है वो लंदन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कह रही मुझे वो नौकरी नहीं मिल पाई जो मैं चाहती थी, तो मजबूरी में मैंने ये काम शुरू कर दिया है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आई गेस नहीं होता, और इनका खुद का सपना है कि ये भी कल को एक एयरबीएनबी खोल लें। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर प्लान कीजिए, जल्दी से कीजिए, और वीकेंड वैसे ही है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए, आप सभी के लिए इक्का बादशाह और डीनो जेम्स की आवाज़ में ये मिक्स मैशअप गाना, मिक्स मैशअप तो नहीं कहेंगे बट हाँ अच्छा गाना है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जस्ट इमेजिन आप लोग सड़क किनारे किसी भी ठेले पे गए हैं और आपने वहां पर गलती से ज्यादा पैसे पे कर दिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब आपको याद भी नहीं है तो फिर क्या होगा? इंसान भूल ही जाएगा, यही होएगा ना। मतलब हम लोग जब घर पहुंचेंगे फिर उसके बाद हमें याद आएगा, अरे ओ शिट, मैंने तो ज्यादा पैसे भेज दिए है ना। मगर इधर कुछ उल्टा हुआ है। किधर की बात करूं? बता रहा हूं, रुको जरा, सबर करो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एक आदमी ने पूरा का पूरा किस्सा शेयर किया है। वो सड़क किनारे खड़े हुए केले ले रहा था, कह रहा मैंने 15 रुपए के 3 केले लिए और फिर उसके बाद गलती से मैंने 1515 रुपए भेज दिए, मतलब 1515 रुपए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? कहता मैं तो वहां से चला गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा। और इसके बाद पीछे से वो जो फल वाला था उसने आवाज लगाई, अरे भैया जी सुनते रहो, आप अपने ज्यादा पैसे दे गए। और फिर उस लड़के ने 1500 रुपए वापस भी कर दिए, मतलब जो दुकानदार था उसने 1500 रुपए वापस कर दिए। अब सोचो जब ये पूरी पूरी स्टोरी शेयर की जा रही है तो फिर लोग ना इसका मजाक बना रहे। लोग कह रहे भाई वो जो फल वाला था उसने तो तुम्हारे पैसे वापस कर दिए, बट उसके इस अच्छे जेस्चर के लिए तुम्हें उसे 100 रुपए तो देने चाहिए थे। देखो ये बात तो है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ वो फल वाला ही असली हीरो है। तो ऐसा भी होता है। और आप लोग सच सच बताइए, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी ईमानदारी दिखाई है कि आपके पास ज्यादा पैसे आ गए हो और आपने वापस कर दिया हो? नंबर है जी 9654896896। अपनी कहानी इस पर शेयर कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना किंग की आवाज में, ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।
1: कार्निवल, द लास्ट राइड, किंग।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

हसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या लगता है इस बार प्रीमियर लीग में कौन जीतेगा? हाँ हाँ, वही जो मैचेस चल रहे हैं अभी, उसमें कौन जीतेगा इस साल? पिछले साल तो बेंगलुरु ने अपना नाम कर लिया था ये कप, मगर इस साल टक्कर दे रहे हैं हैदराबाद और पंजाब। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आई डोंट नो पंजाब को किसकी नज़र लग गई है, क्योंकि पहले उन्होंने स्टार्टिंग के मैचेस बहुत अच्छे से जीते, फिर उसके बाद हारना शुरू किया तो फिर हार ही जा रहे हैं। और अभी अगर मैं बात करूं बेंगलोर की, बेंगलोर तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है हैदराबाद, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे बेंगलोर, चौथे पे है राजस्थान। और राजस्थान और बेंगलोर की अगर बात की जाए, दोनों सेम स्टैट पर खेल रहे हैं इस टाइम। और यहाँ पर जो बेंगलोर है, बेंगलोर के जो नेट रन रेट है ना, वो थोड़े से ज़्यादा है, इस वजह से वो थर्ड नंबर पर है। और बात की जाए इस बार मुंबई की, तो मुंबई है नौवें स्थान पर, लास्ट पर है हमारे ऋषभ पंत की टीम यानी कि लखनऊ। तो ये सारा है पूरा का पूरा स्टैट। अगर बीच में दो टीमों की बात करूँ जिसका नाम है दिल्ली और चेन्नई, तो चेन्नई है छठे नंबर पर और दिल्ली है सातवें नंबर पर, आठवें पायदान पर है कोलकाता। तो ये तो है जी पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल कुछ तो डिफरेंट होने जा रहा है। इस साल शायद दिल्ली जीत जाएगी। नहीं, मैं ऐसी बस गेस कर रहा हूँ कि दिल्ली जीत जाएगी, क्योंकि आज तक दिल्ली ने कभी भी कप नहीं उठाया, तो इस बार तो कप हमारे ही होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए, अप टू यू ये गाना ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

वीकेंड है ब्रो, और इस वीकेंड में आप लोगों को क्या मिलेगा? इस वीकेंड में आप लोगों को मिलेगी गर्मी, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है, बट अगले हफ्ते के बाद। हाँ, कल एक दो दिन तक आपको गर्मी मिलेगी, फिर ट्यूसडे या फिर वेंसडे को हल्की फुल्की बौछार हो सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और छुट्टी का आलम उनसे पूछो जिनको छुट्टी नहीं मिलती सैटरडे संडे को, क्योंकि पता है क्या, जिनको सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं मिलती ना, उनके दिल में बड़ा दर्द रहता है। नहीं, असली वाला दर्द नहीं, वो अंदर वाला पेन, इमोशनल पेन, वो बहुत रहता है। वो बोलते हैं, अरे यार, हम लोगों को भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए थी। तो देखो, जिनकी कल परसों छुट्टी है, ऑल द बेस्ट। आप लोग कुछ अच्छा एंजॉय कीजिए, या फिर आप लोग कुछ अच्छा सोचिए कि कैसे आप लोग एक साइड हसल कर सकते हो, एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारी स्टोरीज ला सकता हूँ जिसमें लोगों ने जॉब के साथ साथ एक बिजनेस खड़ा किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो जैसे कि टाटा बाय बाय की बात आई गई है, तो मेरा भी वक्त हो चुका है यहाँ से टाटा बाय बाय करने का आप लोगों को। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से फिर से परसों, यानी कि हाँ मंडे की शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अभी फिलहाल आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वापस आ रही है गीत विदेश बाजियां, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर। तब तक के लिए एड शीरन की आवाज में ये गाना सिमेट्री, उनके साथ है करण औजला, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक

अभी जो गाना आपने सुना है, गाने का नाम है खत, नवजोत आहूजा की आवाज में है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो सीधा दिल के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने सबसे सच्चे जज्ब छुपा कर रखते हैं। खत आज के दौर में शायद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन कभी खत लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता था, वो किसी को अपना वक्त देना होता था, अपना दिल कागज पर उतार देना होता था। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है, यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ लिखना चाहा है? ये सवाल है आपसे। ऐसा कुछ जो आपने कभी कहा नहीं लेकिन दिल में हमेशा रहा, एक खत जो कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि डर था कि अगर वो पढ़ लिया गया तो शायद सब बदल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा गया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। इश्क में ना सबसे मुश्किल यही होता है कह देना, क्योंकि जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है, और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रखीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं, और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है, बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी, और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किस से कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन दिल अभी भी उसके ख्याल में अटका हुआ है, सुबह भी वही है, शाम भी वही है, बस वो इंसान बदल गया है। और शायद यही इश्क की सबसे खामोश सच्चाई है, इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूं गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है। और जैसे वो हमसे दूर जाता है सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है, लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है। हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। देखो, देखो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में, हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेप

अभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठते हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए, और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।

ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं। पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना, जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा, तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है। पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ, जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना। और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक में क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गए।

0: एक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे हाथ की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ऐ जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पी जा सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

तुम्हें मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यहाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: तुम्हारे हैं।
1: जॉली गुड।
0: दिल भी तुम्हारा।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदारा है, ओ करम खुदारा है, तुझे मुझे

शौर्य को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं, लाखों में एक बने। नो हेलमेट तो नो

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ये भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कटकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा। भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।

चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा हो, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा